यो दशैंमा सीजी ब्रांड तथा सीजी मेरिडिया का होम अप्लायंसेस र होम एंटरटेनमेंट का सामान किन्दा 1,02,000 रुपया सम्म को बचत। वॉशिंग मशीन में 6 केजी, टॉप लोड वॉशिंग मशीन में 4 केजी, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 केजी सॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोवेव में कुकिंग किट र एसी में निःशुल्क जड़ा, साथ ही 0% ब्याज में सजिलो किस्ता। सीजी भरोसा नेपाली को उत्सव दशैं तिहार को एक्सपीरियंस लाइफ विथ सीजी।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: सबिता कोइराला कार्यवाहक अध्यक्ष बेसराज आचार्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं कालीगंडकी गांव कार्यपालिका को कार्यालय बिरघा।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दासू भाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: प्रकाश तिवारी गाउँपालिका अध्यक्ष, सपना गुरुंग उपाध्यक्ष, युवराज अर्याल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं अर्जुन चौपारी गांव कार्यपालिका को कार्यालय अर्जुन चौपारी।
2: रेडियो आदिखोला 105.4

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं देश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: गोविन्द कुमार कर्मचारी नगर प्रमुख, भगवती अरियाल उप प्रमुख, अनिता पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं बिरकोट नगर कार्यपालिकाको कार्यालय बैरघारी सैंजा।

0: नेपाली हरको महान पर्व विजय दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: भीमबहादुर गुरुङ ओडा अध्यक्ष एवं भिरगुट नगरपालिका ओडा नम्बर 9 परिवार।
2: विवाह जन्म मृत्यु बसाई सराई सम्बन्ध विच्छेद जस्ता सामाजिक घटनाहरु 35 दिन भित्र सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा दर्ता

0: नेपाली हरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा ग्राहक वर्ग शुभ चिंतक इष्ट मित्र लगायत स्वदेश तथा विदेश में रहन् भएका संपूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दीदी बहिनी सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रुफ राइटर इंद्र प्रसाद भूषाल र कविता भूषाल पेट्रोल पम्प वालिङ 8 मोड।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: विष्णुचन्द गुरुङ वडा अध्यक्ष एवं वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 12 परिवार।
2: विवाह जन्म मृत्यु बसाइसराय सम्बन्ध विच्छेद जस्ता सामाजिक घटनाहरू 35 दिन भित्र सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दर्ता

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजू भाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: देवबहादुर खार ईश्वर प्रमुख, ईशा राणा उप प्रमुख, ज्ञानराज कोइराला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं सापाकोट नगर कार्यपालिका को कार्यालय सेंजा।

0: नेपालीहरुको महान पर्व विजयादशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरुमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: पीताम्बर श्रेष्ठ अध्यक्ष एवं छाया क्षेत्र मन्दिर व्यवस्थापन समिति परिवार भिरकोट चार सेन्जा।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: दिपेन्द्र केसी, प्रदेश सभापति, नेपाली कांग्रेस सेन्जा क्षेत्र नम्बर एक

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजू भाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: गुरुप्रसाद भट्टराई नगर प्रमुख हेमान्य उपाने उप प्रमुख युवराज अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं गल्याङ नगर कार्यपालिकाको कार्यालय गल्याङ स्याङ्जा।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: सावित्रा कोइराला कार्यवाहक अध्यक्ष बेशराज आचार्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं कालीगंडकी गांव कार्यपालिका को कार्यालय दीर्घा।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: केशर बहादुर खड्का ओडा अध्यक्ष एवं भिरकोट नगरपालिका ओडा नम्बर 3 परिवार।
2: विवाह जन्म मृत्यु बसाई चराई सम्बन्ध विच्छेद जस्ता सामाजिक घटनाहरू घटेको 35 दिन भित्रै सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दर्ता

0: विजयादशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं देश तथा विदेश में रहन्भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: तुलसीराम रेग्मी नगर प्रमुख, देवी अरियाल उप प्रमुख, प्रदीप चन्द्र सुवेदी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं पुतली बजार नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय पुतली बजार स्याङ्जा।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दासुभाई तथा दीदी बहिनीहरू कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: कृष्ण खाड़ नगर प्रमुख, कविता तिवारी गैरे उप प्रमुख, जीवन गेवाली प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं वालिङ नगर कार्यपालिका को कार्यालय वालिङ स्याङ्जा।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: याम प्रसाद अधिकारी प्रदेश सभापति नेपाली कांग्रेस संजा क्षेत्र नम्बर 2 प्रदेश क।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: शेरबहादुर श्रेष्ठ अमृत ओडा अध्यक्ष एवं वाली नगरपालिका ओडा नम्बर 9 ओडा परिवार।
2: विवाह जन्म मृत्यु बसाई सराई सम्बन्ध विच्छेद जस्ता सामाजिक घटनाहरू 35 दिन भित्रै सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा दर्ता गराउँ।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अर्जुन प्रसाद खनाल अध्यक्ष एवं शिव पार्वती वृद्धाश्रम तथा बहुद्देश्य संस्था परिवार वालिङ दश बकुन्ले गलेङ एक रामदी
2: ज्येष्ठ नागरिक हाम्रा अमूल्य सम्पत्ति तथा अभिभावक हुन्, तसर्थ सबैले सम्मान गर्ने बानी बसालौं।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा ग्राहक वर्ग शुभ चिंतक इष्ट मित्र लगायत स्वदेश तथा विदेश में रहन् भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रोप्राइटर डाक्टर सुभाष खान र डाक्टर संस्कृति प्रधान, उपकार डेन्टल क्लिनिक वालिङ 8 बीआईबी टोल, एनआईएमबी बैंक एक घर तल, संपर्क मोबाइल 9845648622 र 9921447029।
0: हामी कहाँ बांगुटिंगो दात मिलाउने, दात में ब्रेसेस लगाउने, दात कलर को सीमेंट भर्ने लगायत दात मुख तथा गीजा संबंधी संपूर्ण उपचार गरिन्छ।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा ग्राहक वर्ग, शुभ चिन्तक, इष्ट मित्र लगायत स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: प्रोप्राइटर लक्ष्मण अधिकारी, सफल फर्निचर उद्योग, वालिङ सुन्दर बजार, वालिङ 1 राममाछा शोरूम, भिरकोट 1 बैरघारी मेन रोड, वालिङ 8 मोड नगरपालिका जाने बाटोमा, मोबाइल 9856309888।
2: हामी कहाँ आधुनिक डिजाइन का आकर्षक सोफा, पलंग, दराज, ड्रेसिंग टेबल तथा काठबाट निर्मित सम्पूर्ण सामग्री पाइन का साथ ही अर्डर अनुसार आधुनिक डिजाइन का फर्निचर एवं फर्निशिंग का सामान सुपथ मूल्य में उपलब्ध।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: सावित्रा कोइराला कार्यवाहक अध्यक्ष बेसराज आचार्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं कालीगंडकी गांव कार्यपालिका को कार्यालय बिरघा।

0: पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा ग्राहक वर्ग शुभ चिंतक इष्ट मित्र लगायत स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका संपूर्ण नेपाली दाजु भाई तथा दीदी बहनी सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभ कामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रोप्राइटर यज्ञ प्रसाद अधिकारी, अधिकारी ब्रदर्स हार्डवेयर एवं मिशनरी स्टोर वालिंग 8 केदारनाथ मार्ग, संपर्क फोन नंबर 0364 41 294 र मोबाइल 98560 29 894।
2: हामी कहाँ विश्व प्रसिद्ध कम्पनी कजारिया ब्रान्ड को ग्रेनाइट मार्बल बाथरूम धाराहरू, उत्कृष्ट ब्रान्ड का कम्बोर्डहरू, छड सिमेन्ट लगायत का निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्रीहरू सुपथ मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको व्यवस्था समेत रहेको जानकारी गराउँदछौं।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दासुभाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रकाश तिवारी गाउँपालिका अध्यक्ष, सपना गुरुङ उपाध्यक्ष, युवराज अर्याल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं अर्जुन चौपारी गांव कार्यपालिका को कार्यालय अर्जुन चौपारी।

0: रेडियो आधी खोला 105.4 मेगाहर्ज।
1: विजय दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं देश तथा विदेश में रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
2: गोविंद कुमार कर्मचारी नगर प्रमुख, भगवती अर्याल उप प्रमुख, अनिता पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं बिरकोट नगर कार्यपालिकाको कार्यालय बैरघारी साङ्जा।

0: विजयादशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं देश तथा विदेश में रहन्भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: सूर्य बहादुर कुंवर अध्यक्ष, भगवती शर्मा उपाध्यक्ष, परशुराम उपाध्याय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं बिरुवा गांव पालिका गांव कार्यपालिका को कार्यालय बिरुवा।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहन् भाई संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: गुरू प्रसाद भट्टराई नगर प्रमुख हेमान्य उपाने उप प्रमुख युवराज अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं गल्याङ नगर कार्यपालिकाको कार्यालय गल्याङ स्याङ्जा। नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा ग्राहक वर्ग शुभचिन्तक इष्टमित्र लगायत स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
2: प्रोप्राइटर बलराम चौधरी, ग्लोबल मल्टिप्रिन्ट सेन्टर वालिङ 8 केदारनाथ मार्ग, मोबाइल 9867190076 र 9811768223।
3: हामी कहाँ कप प्रिन्ट, टी शर्ट प्रिन्ट, फ्लेक्स प्रिन्ट, विवाह तथा व्रतबन्धका कार्ड छपाई, बिल भरपाई, लेटर प्याड, छाप लगायतका विभिन्न छपाईका कार्यहरू सुपथ मूल्यमा गरिन्छ।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: गरमसुर धार्मिक तथा पर्यटकीय केन्द्र वालिङ गल्याङसेङ।

0: नेपाली हरुको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में शिक्षक अभिभावक विद्यार्थी लगायत स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरुमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: मेघराज गैरे प्रिंसिपल एवं पाइनियर्स हायर एजुकेशनल एकेडमी वालिङ सेंजा।
0: गुणस्तरीय शिक्षा हाम्रो प्रतिबद्धता।
2: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
0: पोतप्रसाद लम्साल ओडा अध्यक्ष एवं वालिङ नगरपालिका ओडा नम्बर 2 परिवार।
3: विवाह जन्म मृत्यु बसाई सराई सम्बन्ध विच्छेद जस्ता सामाजिक घटना 35 दिन भित्र सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दर्ता गराउँ।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिका वासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं देश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: विश्वनाथ पौडेल अध्यक्ष, सीता थापा उपाध्यक्ष, सुशील कुमार आचार्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं आदिखोला गांव कार्यपालिका को कार्यालय कृषि सेन्जा।
2: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में सवारी चालक, सहचालक, यात्रुवर्गहरू, यातायात व्यवसायीहरू लगायत स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: क्षेत्र बहादुर गुरुङ अध्यक्ष एवं रामबाछा यातायात प्राली वालिङ एक रामबाछा, सम्पर्क फोन 0364140088, मोबाइल 9841682417 र 9811174587।
0: सुरक्षित, आरामदायी र भरपर्दो यात्राको लागि हामीलाई सम्झनुहोला। रिजर्भमा विभिन्न ठाउँमा पुग्नु परेमा

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं देश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: सूर्य बहादुर कुंवर अध्यक्ष, भगवती शर्मा उपाध्यक्ष, परशुराम उपाध्याय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं बिरुवा गांव पालिका गांव कार्यपालिका को कार्यालय बिरुवा।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजू भाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: देवबहादुर खाँड ईश्वर प्रमुख, ईशा राणा उप प्रमुख, ज्ञानराज कोइराला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं सापाकोट नगर कार्यपालिका को कार्यालय सेंजा।

0: नेपाली हरको महान पर्व विजयादशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: फबी आले ओडा अध्यक्ष एवं वाली नगरपालिका ओडा नम्बर 5 परिवार।
2: विवाह जन्म मृत्यु बसाई सराई सम्बन्ध विच्छेद जस्ता सामाजिक घटनाहरु घटेको 35 दिन भित्रै सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा दर्ता गरौं।

नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तर

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: गुरू प्रसाद भट्टराई नगर प्रमुख हेमान्य उपाने उप प्रमुख युवराज अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं गल्याङ नगर कार्यपालिकाको कार्यालय गल्याङ स्याङ्जा।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: गरमसुर धार्मिक तथा पर्यटकीय केन्द्र वालिङ गल्याङ।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हाम्रा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: सावित्रा कोइराला कार्यवाहक अध्यक्ष बेशराज आचार्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं कालीगण्डकी गांव कार्यपालिकाको कार्यालय बिरघा।

0: नेपाली हरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा सीआर सदस्य संचालक समिति सेवाग्राही लगायत स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: महेश्वर दवाड़ी शाखा प्रमुख एवं माछापुष्ट बैंक लिमिटेड परिवार वालिङ शाखा, सम्पर्क फोन 063-4141-311।
2: सुरक्षित बचत एवं आकर्षक ब्याज दर को लागि हामीलाई सम्झनुहोस्।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दासुभाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: कृष्ण खाड नगर प्रमुख, कविता तिवारी गैरे उप प्रमुख, जीवन गेवाली प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं वालिङ नगर कार्यपालिका को कार्यालय वालिङ स्याङ्जा।

0: रेडियो आदि खुला 105.4
1: खुशी आयो हर्षाली आयो मन बोगिया।
2: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा ग्राहक वर्ग शुभ चिंतक इष्ट मित्र लगायत स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली दाजू भाई तथा दीदी बहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
3: प्रोप्राइटर भगवान सुनार, भगवान बुद्ध सुनचारी पसल, वालिङ आर्ट पीपल बोर्ड, सम्पर्क मोबाइल 9856555510।
2: हामी कहाँ आधुनिक डिजाइन का सुन र चाँदी का गहना तैयार गर्नुका साथै पुराना सँग नयाँ गहना साटफेर गरिन्छ। साथै राशि अनुसार को पत्थर राखेर औठी पनि तैयार गरिन्छ।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दासू भाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्रकाश तिवारी गाउँपालिका अध्यक्ष, सपना गुरुङ उपाध्यक्ष, युवराज अर्याल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं अर्जुन चौपारी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय अर्जुन चौपारी।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को आर्थिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अर्जुन प्रकाश अरियाल महासमिति सदस्य नेपाली।

0: विजयादशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं देश तथा विदेश में रहन्भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: गोविंद कुमार कर्मचारी नगर प्रमुख, भगवती अरियाल उप प्रमुख, अनिता पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं बिरकोट नगर कार्यपालिकाको कार्यालय बैरघारी सैंजा।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: विष्णुचन्द गुरुङ वडा अध्यक्ष एवं वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 12 परिवार।
2: विवाह जन्म मृत्यु बसाई सराई सम्बन्ध विच्छेद जस्ता सामाजिक घटनाहरू 35 दिन भित्र सम्बन्धित वडा कार्यालयमा

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजू भाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: देवबहादुर खाँड ईश्वर प्रमुख, ईशा राणा उप प्रमुख, ज्ञानराज कोइराला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं चापाकोट नगर कार्यपालिका को कार्यालय सेंजा।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: दामोदर तिवारी ओडा अध्यक्ष एवं वालिङ नगरपालिका ओडा नम्बर 8 परिवार।
2: विवाह जन्म मृत्यु बसाई सराई सम्बन्ध विच्छेद जस्ता सामाजिक घटनाहरू 35 दिन भित्र सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा दर्ता गराउँ।

0: रेडियो आदि खुला 105.4
1: सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर।

0: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: सुदीप रेग्मी कार्यालय प्रमुख कृषि विकास स्रोत केन्द्र एवं परिवार वालिङ एक एवा

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: गुरु प्रसाद भट्टराई नगर प्रमुख हेमान्य उपाने उप प्रमुख युवराज अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं गल्याङ नगर कार्यपालिकाको कार्यालय गल्याङ स्याङ्जा।

0: विजया दशमी 2083 को पावन अवसर में हमारा पालिकावासी बुआ आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं स्वदेश तथा विदेश में रहने भाई संपूर्ण नेपाली सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: सावित्रा कोइराला कार्यवाहक अध्यक्ष बेशराज आचार्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं कालीगंडकी गांव कार्यपालिका को कार्यालय बिरगा।

0: समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिकै रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको पांच घरेता कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
1: सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुस् है।